निश्चेतुं क्रियाशीलतास्तीति ज्ञापयन् विभागस्य महानिर्देशकः मोतिराम सापकोटा कृत्रिमोत्पादनानां विक्रय वितरणे रोद्धुम् आपणानुगमनस्य कार्याय तीव्रता प्रदत्तास्तीति समस्पष्टयत्। गत वैशाख मासात् अधुनावधि विपज्जन्य घटनासु निपत्य 97 जना मृता सन्तीति राष्ट्रिय विपद संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणेन ज्ञापितं वर्तते। राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य तथ्याङ्कानाम् अनुसारेण वैशाख मासस्य प्रथम दिवसात् श्रावण मासस्य सप्तदशम दिवसं यावत् देशस्य विभिन्नेषु भागेषु 4,353 विपज्जन्या घटनाः सम्भूताः सन्ति। घटनासु 97 जना मृता 4 जना विलुप्ता 100 18 जना आहता वर्तन्ते इति प्राधिकरणेन ज्ञापितमस्ति। इति समाचाराः।

छु रेडियो नेपाल ख नेपाल पासे समाचार जे उपेश पाखिना दिशा थौ नेपाल समाज चिन्छ सपिकु द दिलागा पञ्चमी छरी याइगु खसु नेपाले दुग्ली थौ वा कनेतक मदिक वा वैगुली वाचाका चोनित जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तागुदो विभागीय कथ हिमाली लागे पच्चा वा वैगु च्वापु क्वा वैगु पहाडी भूभागे अपो व तराइया छुछु थासे पच्चा वा वैगु दुग्मा यागुदो बागमती व गण्डकी प्रदेश या तराई लागे आफ्नो थासे व मधेस प्रदेश नाप कोशी लुम्बिनी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागा मो थासे न न्याइगु मल कुहा वैगु नाप वा वैगु धागुदो कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा छगुनीको थासे आफ्नो वा वैगु धागुदो गण्डकी व बागमती प्रदेश या पहाडी लागा छगुनीको थासे आफ्नो वा वैगु धागु ख नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम हल जोल या भा थकागु दो निगम पेट्रोल छगु लिटरे सोटका डिजेल व मर्चिकने न्यातका दा थकागु ख हवाई इन्धन आन्तरिक नितका व अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकी डलर सचिव स्वीतका दा थकागु दु नुगु भाग कत पेट्रोल डिजेल या मु ए पोखरा व डिपाले छगु लिटरे निस थेङ्गु दुधासा सुर्खेत व दाङे सचिव गुई गुटका दा तुइगु धागुदु भुटु ज्या छेलिगु एलपी ग्यास आपूर्ति प्रणाली बजारी पङ्ग ओगुदु नेपाल आल निगम बजारे माग सिम अपोहे ग्यास आयात ज्याचुङ्गु दाबी यासा तबी उपभोक्ता पि धासा खालिगु सिलिन्डर कुबिया डिलरे लाइने चोनित बाध्य ज्याचुङ्गुदु थोसिवन झन बजारे ग्यास मो पोलिनिथुङका आल निगम 2082 फागुन लिपाङ्गु इपाके बच्चिजक जागु नेगु फुटी छगु लिटर सिलिन्डर ग्यास मिगु व्यस्त यागु ख हाक्न असार 31 गति निसे लागु जुइगु कथ निगम सकता ग्यास उद्योगी पिन्त पुङ्क तौल्या सिलिन्डर ग्यास मित उजम्बिगु ख निगम हे उज कथ आपजारे पुरा तौल्या सिलिन्डर ग्यास मियाचुङ्गुदु भारत ग्यास आयतेन पूर्ण क्षमता जुयाचुङ्गु निगम दाबी यागुदु तर बजारे वास्तविक लु धासा निगम या दाबी सिमे प्याची अख जुयाचुङ्गु ख त्वाले दुगु ग्यास डिपो ग्यास क्यामखने ढुङ्का उपभोक्ता पि तपेङ्क उद्योगे वनिगु या नहगुदु बालाजु औद्योगिक क्षेत्र दुने दुगु नेपाल ग्यास उद्योग या वितरण कक्ष पिने खालीको सिलिन्डर कुबिया थगु पापिया चोपी आफ्नो सरसा ताहाकुकु लाइन जुयाचुङ्गुदु लाइन चोना चोपी उपभोक्ता पिन्सा पिनिया पसौ डेलरे ग्यासका मखने थुङ्का बाध्य जुया उद्योग हे वितरण केन्द्र वे मागु नुग ख पोङ्का दिगुदु मिक शनिबार निसे निगम डेलरे ग्यासका मख पि उपभोक्ता या सहता नीति तासे ए या टेकुई चोङ्गु पुलाङ्गु ज्याकुती नेपाल एसपी एभरेस्ट सुगम व श्रीराम ब्रान्ड या ग्यास मिगु ज्या न्याकुगु दु तर अनन उक्त पिङ्गु लाइन ताहाकुगु जुगुदु टेकु पाखेन ग्यास क्या मखङ्गु उपभोक्ता पिन्छ ताहाकुदु छरिया हुनी जुगु छाकेलाना मिग छम सिगु नि म खापा जुगुदु तालन्याना छम सिगु ख राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण या कथ दे या नि न्यागु जिल्ला सिपेङ्गु विपद या छाका जुगु ख छाकेलाना नि हेगु लाक नि न्यादो दा या क्षति जुगु न थागुदु सरकार पाकिस्तान या ब्रोड पि गे गुछोले मोटुपिन्त बिचा हाकुगुदु परराष्ट्र मन्त्रालय मिग छगु विज्ञप्ति पिथसे झाका लाना निर्मल पूर्जा निम्स दाइ नाप पूर्वबहादुर गुरुङ युक्ता किली पेम्बा शेर्मा किलु निमा शेर्पा नवाङ थिन्दु शेर्पा ओ गेलु शेर्पा नाप मेपी पेम विदेशी मधुगुली बिचा हाकुगु ख थोए चली निम्स दाई नाम मसिका देकादिम विश्व कीर्तिमानी पर्वतारोही निर्मल पूर्जा मधुक्ली वेक जन्म जुयादिगु म्याग्दिया अन्नपूर्ण गाउँपालिका थौ सोमबार शोक विदा पिगुदु अन्नपूर्ण तिन दान्या जन्मका दिम पूर्जा पाकिस्तानी ब्रड पिग अरुणे छोले हिम पहिरेलाना मधुको ख गाउँपालिका नायक भरत कुमार पुन पाखे मिग सार्जन यागु सूचने पूर्जा मधुकुली गाउँपालिका परुवालिसे मुख्य म्याग्दीवासी या त तसुक नुग थु दिक्क स्यागु धका नेता तगुदु वक मधुकुली दुःख पुङ्कुसे गाउँपालिका थौ सोमबार अत्यावश्यक बाहेक फुक्क ज्याकु वडा स्वास्थ्य संस्थालिसे बनिकुथी शोक विदा बिगु कोचुगु ख
गृहमन्त्री सुदन गुरुङ महोत्तरी नेपाल भारत सीमा सोयादिगुदो मिग नेपाल भारत सीमा मथ्यानी मदापुर दस कजा सोयादिगो ख गृहमन्त्री गुरुङ सीमा दुगु सीमा था सोया अनुयो अवस्था सुरक्षा व्यवस्थापन वेगु वनिगु अवस्थाबारे जानकारी खयादिगु ख जनकपुर जयनगर बिजलपुर रेल सेवा मिगनिसे हाक्न यहाँगुदु स्थानीय प्रशासन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका चार किल्ला तया तगु कर्फ्यु चिके धुङ्का निषेधाज्ञा जारी यागुनी जयनगर जनकपुर भङ्गाहा रेल खण्डया रेल सेवा हाक्न झ्याकुगु नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड धागु ख नेपाल या छगु जग जनकपुर जयनगर बिजलापुर ब्रोडगेज रेल सेवा निए छगु किलोमिटर दु राष्ट्रिय सभाया मुज्याथौ निनेसिया जसी जुया छताइले चुनिगु धागुदो मुज्या प्रधानमन्त्री बालिन शाह मधेसी आयोग आर्थिक द 2081-82 प्रतिवेदन सभा न्यवैगु ज्याधलदो मुज्या विकास आर्थिक मामले तथा सुशासन समिति सभापति कृष्ण प्रसाद पौडेल मधेस प्रदेश तोनिगु ल सुचुपिचु व जल स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2083 या त सभा न्यवैगु गोसादु अथे थौ हे पेङ्गु संसद समितिया मुज्यान चोनितेङ्गुदु पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लोकतान्त्रिक मु मान्यता नैतिकता सुशासन व जन उत्तरदायित्व या त बल लाके त न्यौलापिनेगु आदर्श या त नाले कामा दैदिगुदु तुलसीलाल अमत्या नि गुको गुलुमती दिया लसता तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान मिग यलया च्यासले गोसागो गु च्याजले वेक्ल थथे धैदिगु ख वेक्ल नेता अमत्या त्याग इमान्दारी वो जन सेवा आदर्श आतकन अतिक महत्व जागु यत्ना दिल वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग सचिव ओप्पो शङ्कास्पद नक्कली उत्पादन नियन्त्रण कागुदु विभाग अनुगमन पुचल अनलाइन प्लेटफर्म वा सामाजिक सञ्जाल बाखे मिगु इनेगु यानाचङ्गु चिक स्याम्पु चियालिसे थिति निथ छेलेगु हल जोल नियन्त्रण कागु ख नागरिक सुरक्षा या त खटे जुवा चोपी प्रहरी या त खुकुरी पालिगो कुत याम छमेसी त प्रहरी गोली केका जोङ्गुदो यहाँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 13 चुनी खेल पाके सिख लुटे याना बिचुना चोम कर्मा तामाङ या त गोली केका नियन्त्रण कागु जिल्ला प्रहरी परिसर प्रहरी उपरीक्षक दानवर थापा जानकारी ब्यादिगो ख नेपाल भाषा साहित्य खेले पेसर शिव अपो सप्यो पिथने धङ्कुगु जो मधुगु संस्था कुत पिकाक या पिथना बाख सोलापो लु धुवाखा पिदङ्गु ची बाख मध्ये नापा ल्यु लियालु सोपु ची बाख या ची बाख चोमी पिन्त निकगु हर्ष कृष्ण लु धुवाखा शिर्पा लल्हागु ज्या पोङ्गु शनिबार कोचागुदु खोपया भक्तपुर पार्टी भेन्यु गपति सुरबिनाके जुगु उगु ज्याजुले मोपा कथा नेपाल भाषा एकाडेमी भाइस चान्सलर डाक्टर पुष्पराज राज कर्णिका र झायादिगु ख वेक्ल त्वादिवा मतच्याका उलिज्या यादिगु ख पेरुया नाजका सर लिख युरोपेली पर्यटक दुगु छग विमान छाकालाना चिनसम्म मुनुत सिगुदु थो विमान प्रसिद्ध नाजका लाइन्स श्वेत वङ्गु ख नाजका लाइन्स पेरुया पुलापी मनुतेस मरुभूमि देखा तगु तत ढङ्गु भू चित्र त ख जनावरी आकृति देखा तगु थो भू चित्र त विमान व विशेष दृश्यकोण टावर जक श्वेत तालाई पेरुया यातायात मन्त्रालय कथ झाका लाना नेम इटालियन निम स्पेनी ओ निम जर्मनी नागरिक नाप छम पाइलट अमेरिकी सालाजार ओ स पाइलट इरङका गुआनिलो डेल कार्पियो न सिगो धागुदु इन्डोनेसिया या माधुरो तापी छग डुङ्गा मि नोय ढुङ्गा मोटिन नियाम सिगो सिगुदु थोए झाकालिन पि छमनाप खापा जुगुदु ढुङ्गा मि नोय ढुङ्गा समुद्र लोम्बा पि सिगु खोज तथा उद्धार अधिकारी पिन्छ थागुदो इन्डोनेसिया समुद्री छाका नियमित कथ जुयाचुनी अनचिन हेदो शिव अपो
टापुलु। अमेरिका ओ इजरायल न्यानाचोङ्गो ल्वापु त्वाथले त सम्झौता याक्न जुइमा सर्त नाप इरानले नुगो आग्रह दिएको सहमति जुगुदो। तेह्रान नाप नुगो सम्झौता जुइगु सर्ते ल्वापु कोथलेगु धागुदो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शनिबार इरान या त ज्ञानपुगो आक्रमण यागु धैगो रिपोर्ट पिहाँ वे ढुङ्का मध्यस्थकर्ता पिनिगो सलख थथे ख पिहाँ वोगु ख। साउदी अरबिया युवराज नाप ख ल्या ढुङ्का वो तेह्रान पाकिस्तान व टर्की नाप ख ल्या ढुङ्का। अमेरिकी नेता पिनिगो लिपाङ्गु ख पिहाँ वोगु ख। थोएदो थुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहमति जित तालाइगु फलसा पङ्कादिगु दु। थौ दे न्याङ्क वा वैगु धुकुमा यागुदु। मिग निन हेगु डिग्री सेल्सियस क्वाज लुगु सोनिगले थौन थोए ल्याखे क्वाज लुइगु धुकुमा यागुदु। सुथे न्याता इजुवा नि छगु मिनेते लुगु सुर्द्य शनिले खुता इजुवा निन हेगु मिनेटे बी। नेपाल भाषे बुख कोचाल शुभ।

रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। आई भिनसरेसँग देशक विभिन्न शिवालय परिसरमे भक्तजनक भीड बढ़लाक बाद मन्दिर आसपासक क्षेत्रमे सेहो चहल पहल बढ़ल अछि। साउन मासक सोम दिन पहिल भगवान शिवक विशेष पूजा अर्चना करबाक धार्मिक परम्परा रहलाक कारणे भक्तजन सब भिनसरेसँ शिवालय पहुँचल कयल। काठमाण्डू पशुपतिनाथ, जनकपुर धामक भूतनाथ, जलेश्वरनाथ महादेव मंदिर पर भीतर जल, दूध, बेलपत्र तथा विभिन्न पूजा सामग्री अर्पण करैत श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना कयलनि अछि। साउन मास भरि सोम दिनक दिन शिवालयमे विशेष पूजा तथा अर्चना करबाक परम्परा रहलाक कारणे आबयवला सोम दिन समय सेहो विभिन्न शिवालयमे दर्शनार्थीक संख्या बढ़बाक अपेक्षा कयल गेल अछि। राष्ट्रसभाक आजुक बैठकमे सांसद लोकनि जनताक विश्वास अपेक्षा अनुसार काज करबाक लेल सरकारके आग्रह कयलनि अछि। सभाक विशेष समयमे सदस्यगण सरकारसँ जनता अपन हरेक समस्याक समाधान खोजबाक भेलाक कारणे जन अपेक्षा अनुसार काज कयल जेबाक बात बतौलनि। बैठकमे सांसद लोकनि किरण बाबू श्रेष्ठ, नेपाली जनता, विश्वासक सङ्ग राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी रासपाके सरकारक नेतृत्वमे पहुँचलाक कारणे जनताक चाहना आ भावना अनुसार काज करबाक लेल आग्रह कयलनि। ओ देशक स्वतन्त्रता आ लोकतन्त्रक लेल त्याग आ समर्पण कयल नेता सभक आदर्शसँ सकारात्मक पाठ सीख कऽ जनहितमे केन्द्रित होइत समस्या समाधान दिस लगबाक धारणा रखलनि। एहि तरह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेक सांसद रुक्मिणी कोइराला नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक साझा फुलवारी भेलाक कारणे एक आपसमे समन्वय आ भाईचाराक सङ्ग सब जातीय आ सम्प्रदाय सहकार कयल जेबाक धारणा रखलनि। ओ सरकार जनजीवनके सवालमे वास्तविक समस्या पहिचान कऽ ओही आधार पर समाधानक लेल राहतमूलक काज कयल जेबाक बात पर जोर देलनि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल संग मंगोलियाक पूर्व प्रधानमंत्री एवं मंगोलियन चेस फेडरेशनक अध्यक्ष गोम्बोजा भिन जानदा सांतार आई शिष्टाचार भेंटवार्ता कयलनि। सिंह दरबार स्थित मंत्रालय में भेल भेंट में हुनका लोकनि बीच नेपाल आ मंगोलिया बीचक कूटनीतिक संबंधक स्मरण करैत द्विपक्षीय संबंध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार के और सुदृढ़ बनबाक विषय में छलफल भेल अछि। हुनका लोकनिक बीच नेपाल आ मंगोलिया दुनू देश भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पक्ष में बहुत समानता, मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक संबंध रही अलाक विषय पर सेहो विचार विमर्श भेल छल। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रक समृद्धि, पूर्वाधार विकास आ सार्वजनिक सेवाक गुणस्तर दक्ष, ईमानदार आ तथा उत्तरदायी इंजीनियरक भूमिका में निर्भर रहबाक बात बतौलनि अछि। जल तथा ऊर्जा आयोगक सचिवालय जल स्रोत तथा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र द्वारा आई आयोजित सेवा में नव प्रवेशी इंजीनियर के संबोधन करैत ओ सरकारी सेवा में प्रवेश केवल जागीर नौकरी के शुरुआत नहीं भ राष्ट्र निर्माणक अभियान में समर्पित करवला ऐतिहासिक अवसर भेल बतौलनि। मंत्री श्रेष्ठ कहलनि जे प्रत्येक निर्णय, प्राविधिक सुझाव आ हस्ताक्षर कर सँ लाखों नागरिकक जीवन में प्रत्यक्ष प्रभाव पेलाक कारणे उच्च जिम्मेवारी बोधक संग काज कयल जेबाक चाही। राष्ट्रक विकास, सभ्यता आ समृद्धिक इतिहास इंजीनियरक सृजनशीलता, अनुसंधान, अनुशासन आ अथक परिश्रम सँ जोड़ल गेल चर्चा करैत ओ सड़क, पुल, विद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, जलाशय, सिंचाई प्रणाली, पेयजल पूर्वाधार, औद्योगिक संरचना तथा आधुनिक शहर के निर्माण इंजीनियरक दूरदृष्टि आ क्षमता निर्भर रहबाक धारणा रखलनि। मंत्री सेठ देश नया पुस्ताक इंजीनियर सँ केवल प्राविधिक दक्षता मात्र नहि भऽ नवीन सोच, सकारात्मक ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता आ परिणाम मुखी कार्यशैलीक अपेक्षा कयल उल्लेख कयलनि। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय 10% निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी कार्यान्वयन में जोर देलक अछि। मंत्रालय एहि संदर्भ में देशभरिक सेवा प्रदायक, अस्पताल आ जिम्मेवार संपर्क व्यक्ति के विवरण सेहो सार्वजनिक कयलक अछि। मंत्रालय एहि संबंधी सूची सार्वजनिक करैत निःशुल्क सेवा में रोगी पहुँच सुनिश्चित करबाक लेल तथा शिकायत अयला पर तत्काल समन्वय करबाक लेल प्रत्येक अस्पतालक संपर्क अधिकारी तोकल जनौलक अछि। मंत्रालय सार्वजनिक कयल विवरण में संघीय, प्रादेशिक, सामुदायिक, शिक्षण तथा निजी अस्पताल समेटलक अछि। मंत्री निशा मेहताक सचिवालयक अनुसार प्रत्येक अस्पतालक फोकल पर्सन के नाम आ फोन नंबर राखल गेल अछि। एहि सँ निःशुल्क उपचार संबंधी समस्या अयला पर रोगी आ सेवाग्राही

सीधा संपर्क कऽ सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। सचिवालय के अनुसार कार्यविधि सुनिश्चित कयल 10% निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा के व्यवहार में कार्यान्वयन करबाक लेल मंत्रालय निगरानी आ समन्वय के थपकराई कयलक अछि। मंत्रालय सेवाग्राही के आवश्यक पड़ला पर सार्वजनिक कयल संपर्क विवरण प्रयोग कऽ निःशुल्क उपचार संबंधी जानकारी लेबाक लेल समस्या भेला पर शिकायत करबाक तथा सेवा प्राप्ति में समन्वय करबाक आग्रह कयलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 संशोधन विधेयक में डिजिटल करेंसी के कानूनी मुद्राक रूप में समेटबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। निजी रूप में जारी होबय वाला क्रिप्टो तथा वर्चुअल करेंसी के सेहो करेंसी वा कानूनी ग्राह्य मुद्रा नहि मानबाक स्पष्ट उल्लेख कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गतक अर्थ समितिक आजुक बैठक में नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक ऊपर दफावार छलफल के क्रम में डिजिटल करेंसी के अर्थ कानूनी दायरा भीतर छलफल भेल अछि। ओहि अवसर में नेपाल राष्ट्र बैंकक कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावल डिजिटल करेंसी के व्यवस्था रखैत काल केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी CBDC समेटबाक बतौलनि। कार्यकारी निर्देशक रावल के अनुसार क्रिप्टो तथा वर्चुअल करेंसी से संबंधित विषय संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी कानून से संबोधन भ चुकल अछि। अर्थ सचिव डॉक्टर घनश्याम उपाध्याय डिजिटल करेंसी आ डिजिटल बैंकिंग प्रणाली के एकटा विषय के रूप में परिभाषित करब आवश्यक नहीं रहल बतौलनि। एहिसँ पहिने संशोधनकर्ता केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के अर्थ बैंक जारी करय वाला डिजिटल स्वरूप के कानूनी ग्राह्य मुद्रा स्मरण करबाक आ बुझबाक आ एहि शब्दसँ डिजिटल बैंकिंग प्रणाली सेहो जनबाक व्यवस्था प्रस्ताव कयने छलथि। सप्तरीक राजविराज आ बोधे बरसाई नगरपालिका क्षेत्र में जारी निषेधाज्ञा आइ भिनसरसँ हटाओल गेल अछि। जिलाक समग्र जनजीवन क्रमशः सामान्य बनैत गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी जिलाक शांति सुरक्षाक अवस्था सामान्य बनैत गेल निष्कर्ष सहित जिला सुरक्षा समितिक आइ बैसल बैठक के निर्णय अनुसार भिनसर 10 बजे सँ निषेधाज्ञा पूर्ण रूप में हटाओल गेल अछि। मध्य पहाड़ी लोक पार्क अंतर्गत सिंधलिक फिक्कल गांव पालिका वार्ड नंबर 2 नवलपुर में आइ भिनसर बस आ कार ठोकर खेला पर यात्री सहित कार सुनकोसी नदी में बेपत्ता भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के अनुसार सुनकोसी नदी में बेपत्ता भेल कार भीतर 4 गोटे रहल खुलल अछि। काठमांडू सँ ओखल ढुंगा दिस जा रहल बस भिनसर लगभग 11:30 बजे कार के ठोकर देला पर कार सड़क सँ लगभग 150 मीटर नीचा सुनकोसी नदी में खसल छल। घटनाक विस्तृत विवरण आब बाकी रहल प्रहरी न्याय उपेक्षक विजय श्रेष्ठ जानकारी देलनि। आब मौसम। अगला 3 दिन देशक विभिन्न स्थान में वर्षा तथा किछु क्षेत्र में भारी संभावना वर्षाक रहल कारणे सतर्कता अपनेबाक लेल आग्रह कयल गेल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आइ देशक पहाड़ी भूभागक 1-2 स्थान तथा लुम्बिनी प्रदेशक तराईक 1-2 स्थान में भारी वर्षाक संभावना रहल जनौलक अछि। कर्णाली प्रदेशक पहाड़ी क्षेत्र तथा लुम्बिनी प्रदेशक पहाड़ी आ तराईक 1-2 स्थान में बहुत भारी वर्षा भ सकबाक विभागक पूर्वानुमान रहल अछि। विभागक प्रवक्ता विभूति पोखरेल के अनुसार विगत 24 घंटा में देशक अधिकांश स्थान में मध्यम वर्षा भेल अछि आ किछु स्थान में भारी वर्षा हेबाक मापन कयल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कृत्रिम बौद्धिकता AI पूर्वाधार विस्तारक लेल विश्वभरि तीव्र गति में निर्माण भ रहल डाटा सेंटर भारतक केवल विद्युत प्रणाली फाइबर ऑप्टिक आ कूलिंग उपकरण उत्पादक कंपनी के उल्लेखनीय व्यावसायिक अवसर दियौलक अछि। कंपनीक प्रबंध निर्देशक अंकित अग्रवाल AI पूर्वाधार विस्तार के अपन उद्योगक लेल जीवन में एक बेर आब अवसर भेल बतौलनि। हुनका अनुसार विश्वक पैघ प्रविधि कंपनीक बढ़ैत गेल मांग सँ कंपनी के व्यवसायक स्वरूप परिवर्तन कऽ रहल अछि। विश्लेषक एहि के पिक एंड शोभक रणनीति सँ तुलना कयलक अछि। भारत अत्याधुनिक AI चिप वा विश्वस्तरीय मॉडल विकास में अग्रता नहि लेलाक बावजूदो एहि के लेल आवश्यक केवल ट्रांसफार्मर स्विच गियर कूलिंग प्रणाली विद्युत पूर्वाधार आपूर्ति करबाक क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनौलक अछि। श्रीराम MSC के कोष प्रबंधक प्रतीक निगुड़कर के अनुसार भारत AI चिप उत्पादन व मॉडल प्रशिक्षण नहीं कला पर प्रत्येक डाटा सेंटर के लिए आवश्यक उपकरण उत्पादन करवाला क्षमता हासिल
कऽ चुकल अछि। एहि सेवा प्रदायक सँ 1 अरब 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर बराबर के बहुवर्षीय समझौता ई कंपनी कयलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा मे समाचार समाप्त भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी तीन दिन अति भारी बारिश होने की है संभावना, सावधानी बरतने की मौसम विज्ञान विभाग ने की है अपील। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत सिंधुली की फिक्कल गांवपालिका 2 सुनकोशी नदी में गिरी कार, 3 लोग हुए लापता, तलाश है जारी। बजट आवंटन कुशलता और क्रियान्वयन में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का सभी पालिकाओं से संघीय मामला मंत्रालय ने किया आग्रह। और सूडान के डारफर क्षेत्र में सेना के ड्रोन हमले में 35 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और कुछ क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार आज और मंगलवार बुधवार को कोशी, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश की भी संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि काठमांडू घाटी समेत कई जिलों की छोटी नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे अचानक बाढ़ का खतरा बना रहेगा। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, आवश्यक होने पर सुरक्षित स्थान पर जाने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। सिंधुली की फिक्कल गांवपालिका 2 में मध्य पहाड़ी राजमार्ग पर सुनकोशी नदी में कार गिरने से लापता 3 लोगों की पहचान हो गई है। पुलिस के अनुसार लापता लोगों में कार चालक और निर्माण व्यवसायी दिल कुमार लामा, एक्सकावेटर चालक गणेश थापत था, हेल्पर सूरज मगर शामिल हैं। आज सुबह काठमांडू से उखलढुंगा जा रही एक बस ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार करीब 50 फीट नीचे सुनकोशी नदी में जा गिरी। बाढ़ के कारण राहत और बचाव अभियान प्रभावित हुआ है। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल पुलिस और गोताखोरों की टीम लापता लोगों की और कार की तलाश में जुटी है। नेपाली कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल में हुई घटनाओं की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति को औपचारिकता मात्र बताते हुए उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सिंह दरबार में आज हुई संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस ने घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच समिति गठन की मांग को लेकर संसद में दबाव बनाने

0: मानव तस्करी पर रोक और बढ़ती सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। बैठक में कई सांसदों ने कोशी और मध्य प्रदेश की हालिया घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार से शांति और विश्वास बहाल करने की अपील की। वहीं भारत नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों, मानव तस्करी और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए सीमा प्रबंधन मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। शून्यकाल में सांसदों ने रसोई गैस और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त करते हुए बाजार निगरानी प्रभावी बनाने की मांग की। साथ ही नवलपरासी के सुस्ता सीमा विवाद और माइती घर में जारी दलित समुदाय के सत्याग्रह पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। राष्ट्रीय सभा में आज मधेशी आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2081-82 प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून, न्याय एवं संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम ने ये प्रतिवेदन सदन में पेश किया। बैठक में विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पोडेल ने मध्य प्रदेश में पेयजल, स्वच्छता और जलस्रोत प्रबंधन संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन 2083 भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कम वर्षा, भूजल के अत्यधिक दोहन और जल पुनर्भरण की कमी के कारण मध्य में पेयजल और सिंचाई का गंभीर संकट पैदा हो गया है। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए चूरे भावर क्षेत्र के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 21 सावन को दोपहर 1:15 पर होगी। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने सभी स्थानीय निकायों से बजट आवंटन कुशलता और उसके क्रियान्वयन में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा है कि स्थानीय सरकार संचालन अधिनियम के तहत योजनाएं आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और उत्पादन मूलक कार्यक्रमों जैसी निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर बनाई जाएं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ स्थानीय निकायों में निर्धारित प्राथमिकताओं से बाहर संस्थाओं के नाम पर बजट आवंटित किए जाने और वित्तीय अनुशासन के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं। ऐसे में सभी स्थानीय निकायों से कानून के दायरे में रहकर पारदर्शी और जनहितकारी ढंग से बजट खर्च करने का आग्रह किया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् बाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
3: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
0: अब बाकी समाचार। सरकार ने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर आधारित फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित अनुदान कार्यविधि पर आज संबंधित पक्षों से सुझाव लिए। सूचना तथा संचार मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार और विशेषज्ञों ने भाग लिया। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा कि चालू आर्थिक वर्ष के लिए निर्धारित 3.5 करोड़ रुपए के अनुदान का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक कार्यविधि आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकारी सहयोग से बनने वाली फिल्मों में नेपाल के इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक मूल्यों का सशक्त चित्रण होना चाहिए। कार्यक्रम में फिल्म कर्मियों ने अनुदान वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और परिणाम मुखी बनाने, स्पष्ट मानदंड तय करने तथा नए और उभरते फिल्मकारों को प्राथमिकता देने की मांग की। मंत्रालय ने कहा कि प्राप्त सुझावों को समेटकर कार्यविधि को अंतिम रूप दिया जाएगा। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने 10% निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश भर के सरकारी, प्रादेशिक, सामुदायिक, शिक्षण और निजी अस्पतालों के संपर्क अधिकारियों की सूची सार्वजनिक की है। मंत्रालय ने कहा है कि मरीजों की निःशुल्क उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक अस्पताल में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। मंत्रालय के अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की निगरानी और समन्वय को और सख्त किया गया है। अस्पतालों को आरक्षित बेड का विवरण नियमित रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अद्यतन करना होगा। मंत्रालय ने सेवाग्राहियों से अपील की है कि निःशुल्क उपचार से संबंधित जानकारी, शिकायत या सहायता के लिए सार्वजनिक किए गए संपर्क विवरण का उपयोग करें। म्यागदी में काली गंडकी कॉरिडोर के तहत बेनी जोमसुम सड़क भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गई है। जिला पुलिस के अनुसार रघुगंगा गांव पालिका 2 के बैसेरी क्षेत्र में आज

0: दोपहर सड़क के ऊपर से पहाड़ खिसकने के बाद वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सूडान के पश्चिमी डारफर क्षेत्र में सेना के कथित ड्रोन हमले में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। मानवाधिकार संगठन इमरजेंसी लॉयर्स के अनुसार हमला उत्तरी डारफर के गारा अल जाविया गांव में एक पारंपरिक अदालत को निशाना बनाकर किया गया, जहां उस समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतकों में 4 जनजातीय नेता और आरएसएफ के 2 कमांडर भी शामिल हैं। ये इलाका अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र ने डारफर में बढ़ती हिंसा और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। अप्रैल 2023 से सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच जारी गृह युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान को दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बताया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संघर्ष खत्म करने के लिए सोमवार से नई बातचीत शुरू होगी। आज ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और ऐसी कोई योजना भी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ओमान के साथ बातचीत कर रहा है ताकि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का कोई रास्ता निकाला जा सके। इससे पहले ट्रंप ने कल रविवार को कहा था कि उन्होंने ईरान पर होने वाले बहुत बड़े हमलों को फिलहाल रोक दिया है। रविवार को एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था ईरान को हमले की पूरी जानकारी थी, क्योंकि उसने इसकी तैयारी होते देख ली थी। उन्होंने ये भी कहा, हम बातचीत के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, ये सोमवार दोपहर से शुरू होगी। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि ईरान और मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देशों ने उनसे हमले रोकने का अनुरोध किया था, क्योंकि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने दावा किया था कि होर्मुज स्ट्रेट और परमाणु मुद्दे पर समझौते की संभावना बनी हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी 3 दिन अति भारी बारिश होने की संभावना, सावधानी बरतने की मौसम विज्ञान विभाग ने की है अपील। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत सिंधुली की फिक्कल गांव पालिका 2 सुनकोशी नदी में गिरी कार, 3 लोग हुए लापता, तलाश है जारी। बजट आवंटन कुशलता और क्रियान्वयन में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का सभी पालिकाओं से संघीय मामला मंत्रालय ने किया आग्रह। और सूडान के डारफर क्षेत्र में सेना के ड्रोन हमले में 35 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
3: *1415# डायल गर्नुहोस्।
4: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: झण्डु आयुर्वेद,
6: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
5: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
6: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
5: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
6: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
7: के तपाईँ खोला नदीनाला छेउछाउमा बसोबास गर्नुहुन्छ? होसियार, बरसातको समयमा खोला नदीमा पानीको सतह बढेमा तुरुन्तै अग्लो र सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्।
8: विपद बाजा बजाएर आउँदैन, त्यसैले बाढी पहिरोको जोखिम हुने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कागजात र आपतकालीन सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्।
7: हल्लाको पछिन लागि आधिकारिक सूचना र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस्।
8: रेडियो नेपालद्वारा जनहितका लागि।